0: कॉल करना चाह रहे हैं तो वो भी होता 1700 रुपए एक मिनट के लेंगे। मैंने कहा मैं तो किया ही नहीं कॉल। बोले नहीं करे लेकिन फोन तो ऑन था ना आपका, यानी मतलब आप सोचिए आप। तो ये चीजें इसलिए बोलता हूँ आपके प्रोग्राम के जरिए ताकि लोग इस तरह की कोई गलती से फिर उनके बिला वजह ना नुकसान हो जाए, अवेयरनेस लाने के लिए बोलते हैं। और मोबाइल का होना जरूरी भी है और नुकसानदेह भी है, क्योंकि आप कुछ काम के लिए रखिए, आप मोबाइल को ये समझ लीजिए दर्शन साहब कि इसमें स्मार्ट नहीं है, जो पहले वाला है समझ लीजिए अपना 92-96 का जो भी था वैसा फोन है, खाली बात करो हेलो हाँ जी की हाल है तुसी चंगे है बस इतनी बात करो रख दो। नहीं जी उसके अंदर
1: हम रुकते नहीं ना यहाँ पे,
0: बस तो खत्म। नहीं रुकने की तो सजा है दुनिया में, दुनिया में जितने टिकट्स मिलते हैं ओवर स्पीडिंग के मिलते, अंडर स्पीड के थोड़ी किसी को मिलते। और चलते चलते आज की एक बड़ी जबरदस्त बात है कि वो साहब भी आपके साथ तशरीफ रखते हैं, कल भी आए थे बात हुई थी गालिबन
1: जी जी,
0: ये ताजियत बोलते हैं किसी को, कंडोलेंस को
1: जी जी जी।
0: तो ताजियत का अखबार में एक एड आया था
1: जी,
0: मैं खुद पढ़ा हूँ अखबार में, मैं परेशान हो गया
1: जी जी।
0: तो लिखा हुआ था जी बंदे का इंतकाल हो गया है, बड़ी आपकी आपकी आप सबकी दुआ ख्वाहिश है कि इस बंदे के लिए दुआ करो। तो मैंने कहा नाम क्या है बंदे का, नाम पढ़ना शुरू करा उर्दू में एड, तो उस पे लिखा हुआ था जी बंदा जो है कभी किसी पोस्ट को रिजेक्ट नहीं करा,
1: अच्छा।
0: बंदा किसी के डिसलाइक नहीं करा,
1: अच्छा।
0: हर पोस्ट को लाइक करता था, खुशो खुशी से रहता था,
1: हाँ।
0: फेसबुक में मशहूर था, इंस्टाग्राम में सब था, हद तक आके ऑनलाइन मरते वक्त भी ऑनलाइन था।
1: हाँ, क्या
0: मैं बोला यार ये क्या चीज है ये तो बस, हाँ तो आप सोचिए यानी दीवानगी की जब इंतिया हो जाती तो फिर तभी तो लोग पत्थर मारने लगते। तो इन चीजों पे तवज्जो दीजिए, अपनी हदों में रहिए। और कनाडा का कानून कानून नया आ गया है, कनाडा का 16 साल से कम के बच्चे को नहीं इस्तेमाल करने देंगे। आपके व्हाट्सएप ये जो भी सोशल मीडिया वगैरह इससे नुकसान बहुत ज्यादा हो रहे हैं, फायदे कम हो रहे हैं।
1: चलो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच,
0: शुक्रिया जनाब।
1: हाँ जी टिंसा साहब सत श्री अकाल। हाँ जी हाँ जी टिंसा साहब आने रहो तुसी।
2: हां जी सर वो गल ये भी अपने आप ना अपडेट करो, इंडिया इंडिया दे विचो ना तुसी एक रिचार्ज कराओ 1499 रुपए का
1: हो जांदा। हां बिल्कुल बिल्कुल ठीक है।
2: इत्थे इत्थे आके एक ऑप्शन है ओनू वाईफाई कॉलिंग ऑन करनी पैंदी है, तुहानू सारे मैसेज फ्री मिलेंगे सारा, वो ऐसा 14,000 बिल नहीं आउंदे जे तुसी ध्यान रखो अपडेट करो।
1: नहीं हुण ना असीं भी आए हां, मेरी मिसेज ने भी करवाया है, ਉਹ ਨਾ ਕੁਛ 4,000 ਰੁਪਿਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦਾ।
2: ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦਾ 1499 ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ।
1: ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੋਸਟ ਪੇਡ ਚ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪੇਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ।
2: ਨਹੀਂ ਜੀ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਚ 1499
1: 1499 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦੇ
2: ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਓਟੀਪੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।
1: ਅੱਛਾ
2: ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਰਹੋ 14,000 ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ,
1: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ।
2: ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਚਾਰਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚੱਲੂਗਾ 1499 ਰੁਪਏ।
1: ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ,
2: ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਨ ਕਰਨੀ ਹੈ
1: ਜੀ ਜੀ ਜੀ,
2: ਉਹ ਸੈਟਿੰਗ ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ
1: ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਿਓ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਭ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, 647-367-5353 ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਚਰਨ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਕੰਟੀਨਿਊ।

0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है सुरेन जी। रंग बनता तुसी पंजाबी मां बोली नूं समर्पित साडा रेडियो चैनल है ते अज तां तुसी वारे न्यारे वटकड़ ते पंजाबी दा इस तरह दा खूबसूरत कलाम जिहड़ा साडे दोस्तां नाल शेयर कीता। ते हुण दोस्तां मित्रां नूं साग दा नाम लिया सुरेन जी ने, भुख लगी होणी है ते तुहानूं लै चलदे असीं विलेज ऑफ इंडिया। शुद्ध शाकाहारी भोजन दे विच जाणिया पहचाणिया नाम, तुसी साग ते मक्की दी रोटी खानी होवे तां तुसी आ सकदे हो विलेज ऑफ इंडिया ते बाकी इन्हां दा बुफे 40 तों 50 आइटमां दे नाल, जिहदे विच साग ते मक्की दी रोटी तां है ही है, बाकी भी बेशुमार डिशां, क्लासिकल सीजनल सब्जियां तुसी इंजॉय कर सकदे हो। पंजाबी माहौल, पंजाबी खुशबू, पंजाबी जायके दा तुहानू आनंद आएगा उत्थे। बाकी स्ट्रीट फूड इन्हां दा गोल गप्पे, टिक्कियां, भल्ले, डोसे, गर्मा गर्म देसी घ्यो दियां जलेबियां, टिफिन तुसी लगवाना होए 7 दिन लई, 6 दिन लई, 5 दिन लई, ओहदा की मेन्यू होएगा, की उसकी कीमत होएगी 7 दिन लई, 6 दिन लई, 5 दिन लई, हर किस्म की जानकारी तुसी प्राप्त कर सकते हो। 114 कैनेडी रोड, फोन नंबर 905-450-3333, 6430 एरन मिल पार्क वे मिसिसागा, फोन नंबर 905-542-1333, लंडन हैलीफैक्स और विंडसर दे विच भी ब्रांच है। तुसी घर दे विच कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हो, गर्मियां आ गईयां ने, घरां दे विच अक्सर फंक्शन हुंदे ने, तां तुसी उन्हां दा लाइव केटरिंग करवाउणी, उन्हां दा ट्रक हायर कर सकते हो, मेन्यू डिसाइड करके तुहाडे घर दे गेट दे उपर गर्मा गर्म हर चीज तुहानू सप्लाई कीती जाएगी। हाल बुक करवाउणा है 100 तों लैके 125 आदमियां दे लई, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਡੀਜੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। 100 ਤੋਂ 125 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਡੁੱਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ ਫੋਨ ਕਰੋ 905-450-3333, 114 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਵਿਲੇਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬ੍ਰਮਟਨ, ਔਰ 905-542-1333, 6430 ਐਰਨ ਮਿਲ ਪਾਰਕ ਵੇ ਮਿਸੀ ਸਾਗਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, 0777 ਜੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ,
1: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ, ਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ,
0: ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ,
1: ਹੀਰੇ ਆਖਦੀ ਕੇ ਜੋਗੀ ਆ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ।
0: ਹੀਰ ਆਖਦੀ ਜੋਗੀ ਆ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਭਲਾ?
1: ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ।
0: ਤੇ ਕੱਲ ਇਹ ਬੰਦ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਇਹ ਬੈਂਤ ਬੋਲਿਆ, ਹੀਰ ਆਖਦੀ ਜੋਗੀ ਆ ਝੂਠ ਬੋਲੇ।
2: ਚਲੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ
0: ਉਠੜੇ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ, ਤੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਯਾਰ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੁਣਵਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ।

0: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: गीत संगीत देश दुनिया दिया ताजा तरीन जानकारियां नाल लबरेज महकों दा सौगात मंडदा साझा विरसा
2: सोमवार तक शुक्रवार 5:30 AM ते सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक
3: क्रिसमस डे प्रचार ते प्रसार लई संपर्क करो
1: साझा विरसा दी टोल नू 647-835-2294
4: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू दूजा साहिबा वे चित दे महावाका अनुसार सारे ही नगर निवासियां नु बेनती कीती जांदी है भाई अमृत वेला हो गया 4 बज गए उठो इशनान पानी करो गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: 7998877 sofastudio.ca। थैंक यू जी।
1: पाजी अज घरे तंदूरी बनाओ, पर जो स्वाद तंदूरी बॉयज दे आना ओ करे नहीं बन पाउना।
2: हाय गाइस, एंजॉय करो तंदूरी बॉयज, वेज नॉन वेज स्वाद ले तंदूरी खाने ले पहुंचो तंदूरी बॉयज।
1: सांझा विरसा रेडियो दा रेफरेंस देन ते पाओ 10% डिस्काउंट। पार्ट जागो अते वेडिंग ले आज ही केटरिंग बुक करो 9059562111 9054519200। सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशंस।
3: ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਰੈਡੀ ਕਰਨਗੇ ਮਾਰਗੇਜ ਵਿਕਿੰਗ ਗਿਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ।
4: ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਰੀਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ, ਡੈਟ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਮਾਰਗੇਜਸ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡਸ,
3: ਸਭ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗਿਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ। ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਤੱਕ ਦੇਣਗੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ। ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਆਲ ਬੈਂਕ,
4: ਕਾਲ 6476068110
3: ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ sharmamortgages.com।
5: ट्रक एक्सीडेंट ते रब ने हाथ दे के बचा लिया
6: ते कार दे खर्चियां नु हरजीत जंजुआ दी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ने संभालिया। अपने भविष्य नु सुरक्षित करन ते प्रेजेंट डे पीस ऑफ माइंड ली आज ही संपर्क करो हरजीत सिंह जंजुआ।
5: हर तरह दी वधिया इंश्योरेंस पॉलिसी ले याद रखो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हरजीत जंजुआ दा नाम। लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी, क्रिटिकल इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस, विजिटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, किड्स प्लान, RRSP, RESP, TFSA, कॉल कर
6: 5294-647-835-5294।
7: स्टीफन फर्नीचर की धमाकेदार फेस्टिवल सीजन सेल। इस साल फेस्टिवल सीजन में अपने घर को भी जरूर सजाइए। अपने मनपसंद बेस्ट क्वालिटी हाई एंड ब्रांडेड फर्नीचर पे कोई भी रीजनेबल ऑफर एक्सेप्टेबल होगा तो फिर आज ही स्टीफन फर्नीचर आए और अपने घर को स्टीफन फर्नीचर के बड़े बड़े ब्रांडेड फर्नीचर पे बड़ी बड़ी डील्स का फायदा जरूर उठाए। सर्विंग सिंस 1992, फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल। 2 लोकेशंस टू सर्व यू, 2575 स्टील्स एवेन्यू ईस्ट ब्रैम्पटन, 9057900560, 6 Marconi Court, Bolton, 9059519394। Stephen Furniture की धमाकेदार फेस्टिवल सीजन से
8: नाले चोपड़ियां नाले दो दो।
9: आहो जी, मेनू भी पता, नाले ग्रोसरी नाले वधिया खाना, यानी दाना मंडी। दाना मंडी जिथे हर तरह दी इंडियन ग्रोसरी, दाला, मसाले, पिकल्स, चौल, चाह पत्ती, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स,
8: डेयरी प्रोडक्ट्स, स्नैक्स, फ्रेश चिकन, बीफ, गोट मीट, सब कुछ मिलूगा। इना दे रेस्टोरेंट विच तुसी परांठे, चना भटूरा, वेज थाली, वेज बिरयानी, बटर चिकन विद नान दा स्वाद लो।
9: एक बार आओगे फिर बार बार आओगे।
8: अनबीटेबल प्राइसेस, सेल ऑल टाइम। दाना मंडी, 1729 Queen Street, East Brampton, Major Intersection, Queen and Bramley.
9: Call Gagan or Gurinder at 905-286-9257.
6: शादी दी मूवी बनवाने ली या रिंग सेरेमनी ली, वेडिंग एनिवर्सरी, जागो, प्री वेडिंग, बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट कर ली, याद रखो देसी सिनेमैटिक फिल्म अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज दे नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने। बुकिंग ले आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नु 416-930-1251 416-930-1251।
10: ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6475542947 8355294 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

0: टीका टिप्पणी होवेगी, चलंत मुद्दियां ते मसलियां ते
1: तिरछी नजर रवेगी, कनेडा ते दुनिया दी सियासत ते
0: चेहर लगेगी नवे पुराने गीतां दी,
1: बातां होणगियां सभ्याचार ते अमीर विरसे दियां।
0: सुनना जरूर लाइव शो विद शमी पठल 5:30 AM ते सोमवार तो शुक्रवार।
1: बिजनेस दी प्रमोशन ले आज ही कॉल करो 416-917-7073 416-917-7776।

0: या बिल्कुल,
1: क्योंकि वैसे नहीं होता ना, क्योंकि हम पॉजिटिव साइड देख रहे हैं. व्हाट इज द मूवी वुड हैव बीन अ बिग फ्लॉप एंड दे लॉस्ट एवरीथिंग दैट दे पुट इन. तो रिस्क भी तो ओनर का ही होता है ना.
0: नहीं देखो, अगर आपको इतना लगता है कि फिल्म अच्छा काम करेगी देन कॉन्ट्रैक्ट में आप लिखवाओ.
1: एग्जैक्टली, जो भी, क्योंकि रिस्क जो था, अगर जैसे सेम विद एनी अदर एम्प्लॉयमेंट, जो ओनर होता है दैट टेक्स द रिस्क कि भाई मुझे सैलरी तो तब भी देनी है टू लूज मनी. तो लूजिंग तो कोई नहीं आता है कि ओके आई एम गिविंग अप माय सैलरी बिकॉज द कंपनी डिडंट मेक प्रॉफिट और द मूवी डिडंट मेक अ प्रॉफिट. तो ये दोनों साइड होना चाहिए. ये वन साइडेड नहीं होना चाहिए कि इफ यू आर दे आर मेकिंग 250 टाइम्स देन पीपल आर क्लेमिंग शेयर ऑफ दैट. Whereas if they would have not made money, then they were not going to lose anything. So one-sided.
0: नहीं, ये लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर फिल्म फ्लॉप हो जाती फिर आप अपनी जो पे है वो मोड़ते कंपनी को.
1: एग्जैक्टली, पॉइंट वही है कि जो कोई भी एज अ बिजनेस ओनर दे टेक द रिस्क वेदर दे विल मेक मनी और लूज मनी. जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो रिगार्डलेस ऑफ दैट प्रॉफिट और लॉस होता है. आपको सैलरी तो फिर भी देनी अपने कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया हुआ है. तो ये वन एक डायरेक्शन में तो नहीं जा सकता है कि अगर पैसा बन गया देन आई एम गोइंग टू आस्क फॉर दैट गिफ्ट और एक्स्ट्रा बोनस, जो कि ना लीगली तो मिलेगा ही नहीं. क्योंकि नो मैटर व्हाट लीगल लॉयर यू हायर, यू आर नॉट
0: गोइंग. नहीं नहीं, नहीं मिलना. ठीक है सर, बहुत शुक्रिया. नहीं, मेरा एक फ्रेंड लॉयर है, उन्हें हमने मैसेज किया कहिंदा कि कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, भावे तुम कोर्ट चल जाओ जो मर्जी कर लो, तेनू कुछ नहीं मिलना बई कंपनी तो. सो अगली कॉल भी लेने हैं, उससे पहले हरमन साढ़े नाल ने टीम हरमन बत्ता साढ़े मॉर्गेज फाइनेंस केंद्र लैंडिंग द एक्सपर्ट. सो हरमन वेलकम.
2: गुड मॉर्निंग एवरीवन. नवी कल एक क्लाइंट दी फाइल दसदा, बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन है, स्पेशली जेडे क्लाइंट्स कोल घर हैगा उन्होंने लेस देन 20% डाउन ते कर लिया सीगा. सो क्लाइंट आए मेरे कोल अप्रूवल लैके एक बैंक तो कि जी साडे कोल पहला घर सीगा 700,000 का लिया सी असीं 10% डाउन ते, हुण असीं उह सेल करके नवा घर लै रहे हैं 900,000 का, ते आ साडे कोल अप्रूवल हैगी आ, तुसीं की बैटर कर सकदे हो. सो मैं जदों अप्रूवल रीड कर रहा सी मैं देखिया उहदे च CMHC फी लगी हुई सी $19,000. मैं उन्होंने क्वेश्चन पूछा, कहते जी वो तो देनी पैनी है, कहते लेस दैन 20% डाउन कर रहे हैं नवे घर. मैं बिल्कुल देनी पैंती है, बट मैं जी तुम पहला दी हुई है वह क्रेडिट लै सकते हो. सो 700,000 का पहला घर लिया उन्होंने लैस दैन 20% डाउन, उदो उन्होंने $18,000-$19,000 CMHC फी दी होनी है. ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਘਰ ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ $20,000-$21,000 ਤੁਹਾਡੀ CMHC ਫੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ $200,000 ਦੇ ਫਰਕ ਤੇ. ਸੋ ਸਿਰਫ $6,000 CMHC ਫੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਰੀ $27,000 ਦੇ ਕਰੀਬ CMHC ਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਟਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ. ਸੋ $21,000 ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ. ਸੋ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ. ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦਾ $21,000 ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ $21,000 ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਣਾ. ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਣ. ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮੌਰਗੇਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ. ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਟੀਮ ਹਰਮਨ ਬੱਤਾ 6476859000 647-685-9000. ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਵੀ.
0: ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਮਨ. 647-685-9000 ਟੀਮ ਹਰਮਨ ਬੱਤਾ. 6122 ਹੈਲੋ.
3: ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ. ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, 250 ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਸਟ ਆਪਣੀ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਜਸਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਊਟ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ.
0: ਕੀ ਮਤਲਬ?
3: ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਸਟ ਆਪਣਾ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ.
0: ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿਉਂ ਐਂ ਕਹੂਗੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕੁਛ? ਹੈਲੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟੀ ਗਈ. 0575. ਹੈਲੋ.
4: ਹਾਂਜੀ ਨਵੀਂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ?
0: ਬਹੁਤ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ?
4: ਹਾਂਜੀ

0: Drive, Brampton. Major intersection, Steeles and Kennedy, 90545-12600.
1: ड्राइव कर रहे हो, शो नो एंजॉय कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो?
2: ड्राइविंग लाइसेंस?
1: नो.
2: पुलिस ऑफिसर?
1: नो नो.
2: ट्रैफिक लाइट्स?
1: नो.
2: देन
3: डायमंड इंश्योरेंस दे पवन कौर गिल दा ए मैसेज. मोस्ट ऑफ इंटोरियंस इग्नोर कर रहे हैं अपनी ऑटो इंश्योरेंस रिन्यूअल या अपने रेट नो चेक कर ले. आज ही कॉल करो 30 तो वध कंपनीज नाल काम कर रहे पवन कौर गिल. 3 मिनट दे विच 300 तो लेके 1500 तक साल दी इंश्योरेंस कट सकती है ऑटो होम और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज दी. 647-325-9900 647-325-9100 पवन कौर गिल फ्रॉम डायमंड इंश्योरेंस.
4: जिंदगी एक सफर है सुहाना.
3: की तुसी कैनेडा विच स्टूडेंट वीजा दे उते वर्क परमिट ते आए होए हो या तुसी कैनेडियन सिटीजन या पीआर होल्डर हो, अपने दोस्त रिश्तेदार ते मित्रां नूं अगर विजिटर या टूरिस्ट वीजा ते कैनेडा बुलाउणा चाहुंदे हो तां परखिया ते भरोसे वाला नाम पंजाब विच सब तो वध सक्सेस रेट दे नाल ईजी वीजा विजिटर वीजा कैनेडा दा लगवा के दे रहे हन. वधेरे जानकारी लई ईजी वीजा 9592200200 9992200200 ते अज ही कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बनाओ.
0: ऑटो ओनर्स, क्या आप ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं या फिर नया ड्राइवर ऐड करने के बाद आपका इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत बढ़ गया है? अगर आपके पास जी या जी टू लाइसेंस है और कनाडा में 3 सालों का इंश्योरेंस एक्सपीरियंस है तो टेंशन मत लीजिए.
5: ऑल स्टेट इंश्योरेंस के दीक्षा गुलेरिया को आज ही कॉल करें, जो आपको अच्छा प्रीमियम, ऑनेस्ट एडवाइस और ग्रेट सर्विस भी देंगे. अपनी होम और ऑटो इंश्योरेंस का पैकेज बनवाएं और अप टू 30% तक बचाएं. ऑल स्टेट इंश्योरेंस के दीक्षा गुलेरिया 6476562810. That is 647-656-2810.
6: हाँ वीर रणवीर, किधर फाइला चक्की फिरदा सवेरे सवेरे?
7: ओ पाजी, मॉर्गेज लई महीना हो गया, एक दफ्तर तो दूजे दफ्तर टक्कर काटदे होए. यार आ किन्ने सवाल जवाब करदे ने मॉर्गेज वाले.
6: देख भाई, जे तू लेना मॉर्गेज या लोन ते तेरा काम 24 घंटे च करनगे मिस्टर संधू.
7: अच्छा जी.
8: आहो जी, नीड प्राइवेट मॉर्गेज एंड लोन्स? देन कॉल मिस्टर संधू एट 9056712000. नो क्वेश्चंस, नो क्रेडिट चेक, लोन अप्रूवल विद इन 24 आवर्स. नंबर रखो याद, 905-671-2000 9056712000. Mr. Sandhu.
3: टैक्स का सीजन आ चुका है. पुराने अकाउंटेंट नाल खुश नहीं हो या टैक्स दे विच थोड़ियां बचत किथे होनियां, केड़े-केड़े लिमिट्स तुहाडे लई सरकार ने सेट कीते हन, लोन मिल सकदे ने या किते भी थोड़ी कंपनी दी शेप किस तरह होनी चाहीदी है. पंजाब टैक्स सॉल्यूशन दे जगजीत साचा जी मिसिसागा ते कैम्ब्रिज दीआं 2 लोकेशनस तों नवीआं फाइल्स इत्थे लै रहे ने, उत्थे तुहानूं सुचेत करदे हन आउण वाले समें लई. टैक्स दीआं सर्विसिस लई पंजाब टैक्स सॉल्यूशन 416-720-3642 416-720-3642 पंजाब टैक्स सॉल्यूशन. Sure.

0: Aldi Poncho, 30 Rambler Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 90545-12600.
1: Hello bro, kithe hai tu?
2: Main client ko milne ja raha hu. Soch raha si Tim Hortons pe baith jaiye.
1: Oh yaar, ye to old school ho gaya. Hun ta client meetings classy honiyan chahidiye ne. Nazara restaurant leke jao unna nu. Private booths ne, full privacy mildi hai. Free wifi te luxury ambience. Business meeting bhi set ho jandi hai. Te khana bhi bahut vadhiya.
2: ओहो, ये तो प्रॉपर प्रोफेशनल मीटिंग होगी।
1: नजारा रेस्टोरेंट, 30 रैम्बलर ड्राइव, ब्रैम्पटन, मेजर इंटरसेक्शन, स्टील्स एंड कैनेडी। हुए कॉल करो 905-451-2600, 905-451-2600।
3: रियल एस्टेट दी दुनिया विचाओ, अपने सुपनेयानु सच कर वखाओ, फेयरडेल रियलिटी इंक ब्रोकरेज नाल हाथ मिलाओ,
4: रियल एस्टेट दियां बरीकियां सिखो, ते कंपनी वलो क्लाइंट्स लीड्स भी पाओ,
3: फेयरडेल रियलिटी इंक ब्रोकरेज नवे एजेंट हायर कर रहे ने,
4: आज ही कॉल करो, फेयरडेल दे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, हरदीप पंदेर नू,
3: 905-671-2000,
4: फेयरडेल नाल हाथ मिलाओ, अपने सुपनेयानु सच कर विखाओ।
5: ਘਰ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਟਰਸ ਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਲਟੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣੋਗੇ? ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ, 5-star ਹੋਟਲਸ, ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਕਸਟਮ ਕਾਰਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 7 ਸਾਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫ੍ਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਈ ਸੁਖਮਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-816-8406-416-8164-8884-8801।
6: ओ यार, बिजनेस का माड़ा हाल होया पे, इतनियां तरकीबां लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
7: निर्बल बाबे ने कहा सी कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो, पर कृपा तो हो ही नहीं।
8: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ली पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
9: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
10: रेडियो आवाज, रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक, प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200।
11: पापा पापा, सुनते क्यों नहीं, चॉकलेट लेनी है।
12: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
13: अरे महेश, अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो,
9: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम टू बम ट्रैफिक एंड बम टू बम कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10, मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1, रेडियो आवाज।
14: You are listening to your favorite radio show, Radio Awaz, the voice, Zindabad, Zindabad. For advertising, please call 416-518-3200.

0: इस गाने को लिखा और बड़ा खूबसूरत ही सौग है और बिल्कुल मीनिंगफुल गाने दे विच जो लोगों के नाल जुड़िया हुआ मीनिंगफुल गल की जाती है तो ये क्या भी तेनों कोई सबर नहीं हो सबर का मतलब है संतोष होना संतोष जी मेरे नाल ने संतोष जी का होना संतोष जी
1: कहानी
0: डोनल्ड ट्रंप नु सुनाउणी याद करा दियो बस मैनु
1: मैं वेट कर रही हां उसी
0: ट्रंप नु कहानी सुनाउणी है के रिश्तियां ते दोस्ती च वधे घटे नहीं दिखी ते ट्रू स्टोरी है एक छोटी जी लड़की दी जेड़ी सड़क दे उत्ते तरबूज बेचदी सी
1: जी
0: ओदी कहानी है छोटी जी गरीब कुड़ी है ए ते दी मां दोनों जने हैं
2: हेलो जी ज्योति फ्रॉम ग्रीन वैली गार्डन
0: हां जी ज्योति क्विक रखेंगे के असी ना एक बार सारन दस दिए आज जिद्दा दा मौसम है संतोष ऐ जी करदा खुरपा चक्या होवे
1: हैं
0: मिट्टी च मिट्टी हुई है कहंदे ने दसे मिट्टी च मिट्टी हो गए इसीलिए बीमारियां नहीं लगदियां सी अज तुहानू सारयां नू बेचैनी डिप्रेशन स्ट्रेस इंगड़ा पिंगड़ा टिंगड़ा तुसी टोरंटो डाउनटाउन जाओ गोरियां कोल जिन्हां कोल जगह नहीं हैगी ना बैकयार्ड नहीं हैगे गमले लाए हुंदे ने बालकोनियां दे विच दुनिया भर दे अपने शौक पूरे करदे ने धरती नू प्यार करदे ने धरती दे मालको आ पहुंचो ग्रीन वैली गार्डन सेंटर ते ज्योति हमारे पास कौन कौन सी सब्जियां हैं
2: सब्जियां हमारे पास बैंगन से लेके तोरी टिंडा तर
0: हाँ मैं तरह भी लेके आया ज्योति तो
2: हाँ जी
0: तरह भी लेके आया तार हाँ जी और बोलिए
2: रेड पेपर है ऑरेंज पेपर है अलग अलग टाइप की ग्रीन चिलीज रेड चिलीज भिंडी करेला जुकीनी ये सब सभी वेजिटेबल्स
0: मतलब कोई सब्जी ऐसी है नहीं जेड़ी मैं दसवां क्योंकि मैं गड्डी भर के लेके आया सीगा सारे दी असि तीन घरां दे विचों सब्जी लगाई है तीन घरां ने सब्जी लगाई है सी ते ज्योति नंबर 2 क्वेश्चन है साडे को फ्रूट दे ट्री केड़े-केड़े ने फ्रूट दे
2: हां फ्रूट के भी सारे ट्रीज है एप्पल पेयर प्लम चेरीज नेक्टरीन के अलग-अलग टाइप्स भी है हमारे पास और कुछ कुछ ट्रीज को तो छोटे छोटे फ्रूट्स भी लगे हुए हैं
0: हाँ जी सो इधर नाल जो हमारा ग्रीन गार्डन सेंटर है जहाँ पे खुशबू आती है फूलों की कनाडा में खुशबू नहीं आती फूलों में तो उसके बारे में बताएं खुशबूदार फूल कौन कौन से
2: हाँ जी हमारे पास रोजेस जो आए हैं वो बहुत बढ़िया है बहुत खुशबू है उसकी जो इन जनरली हम देखते बाहर स्टोर में खरीदते तो वो रोजेस को बिल्कुल खुशबू नहीं होती है तो ये जो रोजेस है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ब्राइट वैरायटी और उनकी इतनी अच्छी खुशबू है उसके साथ साथ हमारे पास लाइलैक है उसकी भी बढ़िया खुशबू होती है लैवेंडर्स के टाइप्स हैं हमारे पास एक लैवेंडर जो हमारे फार्म में इन हाउस ग्रोन हुआ हार्डी लैवेंडर है वो लगाओ उसकी खुशबू
0: मैं बस इतनी कहने लगा ज्योति जे धरती नु प्यार कर दे नेचर नु प्यार कर दे अपने आप नु प्यार कर दे अपने घर दी बनी हुई सब्जी चटनियां पिंडा मंगो खानियां शहरा मंगो खानियां प्लीज रीच टू दैम फुल लेने ने घा का बी लेना बूटे रियो लेना बैग लेने ने हाई क्वालिटी के बैग लेने दे रियो दे जेडे क्रीडियन टायर ते उत्ते पैंदे होम डिपू ते पैंदे उस लेवल दे जस्ट पहुंचना कित्थे है ग्रीन वैली गार्डन सेंटर 647-222-5601 647-222-5601 जे तुसी कैम्ब्रिज तो आ रहे हो लंडन तो आ रहे हो वर्थ है आना वर्थ बिल्कुल वर्थ है क्योंकि वो बूटे तुहानू कित्थे होर नहीं मिलने ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋਰਸਟਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਫ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈਮਿਲਟਨ ਤੋਂ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਓਕਵਿਲ ਤੋਂ ਨੈਗਰਾ ਫਾਲਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਟਫੋਰਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਵੁੱਡਸਟਾਕ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ 2547 ਐਂਬਲਟਨ ਰੋਡ ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਈਨ ਸਟਰੀਟ ਆ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬਲਟਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੂਣੀ ਮੋੜ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਂਬਲਟਨ ਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ 401 ਤੋਂ 401 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਤੇ ਨਾਰਥ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਣਾ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਟੱਪਣੀਆਂ ਕੁਈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਈਨ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਬਲਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਲੀ ਗਾਰਡਨ ਸੈਂਟਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਖੂਬ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋਤੀ ਰਿਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਮੈਕਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਨੋਟ ਰਿਓ, ਪ੍ਰੀਮੈਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸੀ ਰਿਓ, ਬੂਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਫੁੱਲ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿਆ ਬੋਲਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏਗੇ ਔਰ ਬੜ ਜਾਏਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ?
1: ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੈਰੀਨੀਅਲਸ ਥੇ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਆਏਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਕੁਛ ਕੁਛ ਪੈਰੀਨੀਅਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੀਏ ਥੇ ਉਹ ਡੇਜ਼ੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਤੋ ਸਪਰੈਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਤੇ ਤੋ ਆਪਕਾ ਅੱਛੇ ਸੇ ਬੈਕਯਾਰਡ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਸੇਮ ਲਾਵੈਂਡਰ ਵੀ ਵਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬੈਕਯਾਰਡ ਕੋ ਕਹੀ ਵੀ ਲਗਾ ਦੋ ਤੋ ਇੱਕ ਕੇ ਦੋ ਲਾਈਕ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਉਸਕੀ ਗ੍ਰੋਥ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ।
0: ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਬਾਤੇ ਕਰਕੇ ਕਰੂੰ, ਪਰ 642-5501 ਡਾਇਲ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣੇ, ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ, 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਦੇਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। 6472221 6472221 ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਲੀ ਗਾਰਡਨ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਆਓ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵਧਾਓ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਬੈਠੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। 647-222-5506

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड टोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किसको करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
2: 416-509-1509
3: और visit insuranceforyou.ca।
4: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road East Upper Airport and Derry the intersection upper to see cheap flight tickets si pal de vich Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options suno chahide ne ja tusi visa services di pal de vich puri family vacation upar jaan di soch rahe ne jithe tanu all inclusive vacation packages bhi milde ne pahunchna va ji Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection upar call kar sakde ho 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection over.
5: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
6: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
5: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
7: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको दौरा पै गया, टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर ले गया। आटा दाल चावल नाले सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट, दूसरी लोकेशन 20 ग्लिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 2898010566 नोबेल फ्रेश फूड।
8: विमला विलेज लवलीच पढ़दे पीयूच जंट पढ़दा, विमला विलेज लवलीच, विमला विलेज लवलीच पढ़दे। सत श्री अकाल जी, मैं हां तुहाडी अपनी शिप्रा गोयल ते तुसी सारे सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो सुखी निज्जर जी दे नाल।

0: कनेडा विच रहंदे होए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
1: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
2: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो तो सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-455-3381 ते 416-457-3381 ते।
0: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे। हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नूं कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381।
3: कैनेडा दे स्टडी वीजा, एक्सप्रेस एंट्री, कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री, स्पाउसल फाइल, पेरेंट्स पीआर, सुपर वीजा, नैनी, वर्क परमिट, फार्मर, इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल, गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सलूशन लैण लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो।
4: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया, होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन। हुणे ही कॉल करो
5: 7 in the 700s bahut jald aa rahe ne semi detached kar 8 lakh di range de vich in the 800s releasing very soon sab to khas double car garage wale vadde detached kar sirf 9 lakh dollar di range de vich in the 900s releasing very soon public release to pehla best lot end lot corner lot de layi jald to jald sampark karo at 416-302-0016 416-302-0016
6: 4 1 6 3 0 2 0 0 1 6 4 0 0 16 3 0 0 4 1 6 3 0 2 0 0 1 6 4 0 0 16 3 0 0 16 team 5 30 to tussi sun rahe ho des pardes prime time radio today vich live gal bat kar layi hune call karo 905 5 4 4 4 sun de ro des pardes prime time radio chalo am 5 30 to